सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

वेलकम ब्याक वन सेकेंड ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली मो देश हाँ साथी सतरे मो जन्मभूमि प्रकृति अत्यंत मनोहर प्रभात समय रे सूर्य उदय हेले सबु दिगरे सुनेली आलोक छुटी जाए पक्षी मानंकर चिक्की चिरिमिचिरि स्वर शुणिले मनरे खुशी भरी जाए सबुज धान खेत पवन दोहली जाए ग्रामर छोट छोट पथर से शिशु मान खेलती से ही परिवेश मो मन को सदा आकर्षित करिथाए हाँ साथी से भरी जेतेबले सूर्य अस्तगामी हुंती से रक्तिम आकाश सहित से सबुज रंगर खेत बेस मन किणी थाए पक्षी मानंकर घर बाहुड़ा सतरे मो देश केते सुंदर सतरे मो जन्मभूमि केते सुंदर

वेलकम ब्याक वन सेकेंड ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चले छी मो दिशा हां सधी मो जन्मभूमि रे सबुठ बडा सौंदर्य हेउची सेई सागुआ वन सागुआ गच्छ ओ शक्तिशाली उच्च ओ शक्तिशाली सेमानकर शाखा प्रशाखा आकाश को छुइबा को चेष्टा करे घन सबुज पत्र ग्रीष्म शीतल छाय देथाय वर्षा रे सेमाने अधिक सबुज हो जांती पवन बहिले पत्र माने मृदु स्वर रे झुमी जांती मन हुए प्रकृति गीत गाउछि साथी सागुआ वन केवल देखा सुंदर नुहे यह आम पाई अत्यंत उपकारी सागुआ काठ शक्तिशाली और दीर्घस्थायी जहां प्रकृति को आहुरी सुंदर करदे थाए

आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक प्रसारित होछि 100.4 मेगाहर्ज जोगे। आज गुरुवार 1948 शताब्द वैशाख मास 31 दिन इंग्रजी मई 21 तारीख 2026 मसीहा। श्रोतबंधु स्टूडियो घंटे समय वर्तमान सकाल 5:58:40। आमर अगणित श्रोताबंधु मानंकु शुभ सकाळ शुभेच्छा एवं अभिवादन जणाई आरंभ करुछु आज दिनर प्रथम अधिवेशन।

0: କବିର ବଚନ ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାରିକୁ ଛୋଟ ବା ନ୍ୟୁନ ମନେ କରି ଅନାଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଛୋଟ ଜିନିଷଟି କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିଦେଇପାରେ। ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ସାଥୀ ଶୁଣିବା ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा

करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेलकम बैक अगेन, ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो को हुचंते दिल से दिल तक। सदी वर्तमान टाइम ही छे आपण मानको पई मॉर्निंग अपडेट रूम आपण मानको कहबी जे आजर कोन रहिची वेदर रा हालचाल एवं कोन स्पेशल आजी रहिची वर्ल्ड रे कोन स्पेशल रहिची आजी दिन रो कहार अछि आजी हैप्पी बला बर्थडे एवं कोन कोन घटिबो एक्सपेक्ट करा जाउची आजर दिन रे। तबे साथी फर्स्ट स्टार्ट करिबा सही वेदर रिपोर्ट रू जो खरा आपन को भारी हंत संत कलानी गुळुगुळी आपन को भारी कष्ट देलानी।

ସଦୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି 7:30 ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆପଣ ଯୋଉ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ରହିବେ ତାର ରିଜନ୍ ସବୁ ତ ପୁଣି କହିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ ତ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଦିନ ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ବିମ୍ବ ଅଗଣାରେ। तेज से फर्स्ट आरंभ कर प्रोग्राम हाइलाइट 7:10 स्वास्थ्य आज शुणे चा और स्वास्थ्य ए विषय आलोचना करेंगे डॉक्टर अश्विनी कुमार साहू शुभ सकाळ शुणीपारे 7:25 8:30 शुणे मॉर्निंग मेलोडी 9:00 डायल इन लाइफ चिटचाट रे आज आपण कहिबे जदि आपणकर फेवरेट सेलिब्रिटी आसिके आपणक पाखरे पहुंची जानती आउ कपे चा पीवार अवसर मिले तांक सहित बसिकी ताहले आपणकर कथाबार्ताटा केउं टॉपिक रो आरंभ हबो। दिन 10:00 शुणे रेनबो एसएमएसर कार्यक्रम आपणकर फरमाइस को पूरण करिबो आमे आपणकर मेसेज आपणकर एसएमएस थ्रू रे एवं परे परे दिन 11:00 शुणे कार्यक्रम कलाकार पुरणा हिंदी चलचित्र गीत शुणी परिबे दिन 11:30।

में एक ही इस जमीन की शान है, विविधता में एकता ही इस जमीन की शान है, हर रंग हर जुबां में बसता एक ही हिंदुस्तान है। भाषा अलग, मजहब अलग, लिबास अलग, पर धड़कन एक ही है, गुलदस्ता ये सतरंगी हमारी सबसे बड़ी पहचान है।

साथी स्टूडियो घंटे समय ही आई चीज 17:26 रेडियो सफर आपण माने समस्त रेडियो पाखरे आपण मानंकर म्यूजिकल हम सफर विश्वजीत। हेलो हाय नमस्कार आदाब सश्रीयकाल एवं ता सहित गुड मॉर्निंग जर्नी स्टार्ट कर दउचु आजर शुभ सकाळ। अच्छा गुड कथा कोंतु आपण के भाबिचंती स्कूल टाइम रे से फंक्शन हो बा कॉलेज टाइम रे से मस्ती बरजात्री रे से नाच हो किंबा ऑफिस रे से पार्टी आमे इंडियन माने ना सबुठी जो सब लुक रे जे कोनसे म्यूजिक रे बीट्स रे बा कल्चर रे निजरा वाइफ स्कूटी ना कोटी खोज दो सतकथा ना नहीं कहले जेमती मूड रे भी थांतु जो ओकेजन पे आपण थांतु जदी म्यूजिक टिके बाजिला जदी कल्चर रे कथा किछि सेठी उठिला ताले निजरा वाइफ ता भितरे आमे निश्चय खोज दो आ ता भी सो इजीली कारण आम माटी आम देश रे एमिति गुटे स्ट्रेंथ एटा बा ब्यूटीफुली एटा कहि परंती जहा वर्ल्ड रे सबुठार यूनिक मु कहूची कल्चरल डाइवर्सिटी रा कथा सांस्कृतिक विविधता हिमालय ठारु कन्याकुमारी विराट आम भारत आउ ए पूरा विराट भारत रे प्रत्येकटी जागा रे प्रत्येकटी अंचल रे प्रत्येकटी भाषा आम भारत प्राय 121 रु अधिक मुख्य कथित भाषा कहे 19,005 अधिक उपभाषा कहे 100 किलोमीटर दूर रे एठी परिवर्तन हो जाए स्वाद पोशाक और संस्कृति रे परिभाषा हेले ये ही तो आमर गोटे सबुठारु बड़ परिचय आमर एक परिचय भारतीयता किंतु ए एकता भीतर रहिछि विविधतार अनेक रंग अनेक रूप এই বিবিধতা ভিতরে একতা হি আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বি আমার এই ভারতর গোটে ইউনিক সৌন্দর্য।

वेलकम बैक टू करीचंद 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कोहचंदे दिल से दिल तक साथी आज हो जी वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डायलोकंस डेवलपमेंट जब विश्व कहे कल्चरल डाइवर्सिटी रा कथा तबे सर्वप्रथमे आम आखि को आसे आम भारत रो उदाहरण एमिति को भूखंड जोठी इति सांस्कृतिक संभार भितरे भी मन भारतीय परस्पर प्रति संस्कृति एवं सम्मान आमर गोटे आकर्षण एवं से आवेग भितरे पुनी परस्पर प्रति रेस्पेक्ट भी आउ से सांस्कृतिक विविधतार महक आहुरी अधिक बासे जेबे परस्पर सहित ए विषय रे सुंदर आलोचना हुए जानिबार इच्छा बढ़े बुली देखिबार अनुभूति हुए एवं तारि भितरे पुनी केबे निजकु हजाई देबार आनंद मिलि जाए ए सबु ताको आहुरी लवली करि दिए। तबे आज रे दिन रे जेबे विश्व कहुचे ई कथा जे परस्पर रो संस्कृति एवं तार विविधता को हमें सम्मान दबा उचित या फरे विश्व गुटे सुंदर स्थान हे परिबो जोठी शांति रहिबो प्रगति मध्य हबो एई सांस्कृतिक रे विविधता रा हात धरि विश्व आगु को बढ़िबो सेई कथा भारत कहि आसुचि आद्यरु सारा दुनिया रे अछि जेते संस्कृति तार विविधता भितरे एकता ही आमर आह्वान एवं एई विविधता मध्यरे एकता सबु संस्कृतिर हात धरी सबु संस्कृतिर सेतुरे प्रगति को छुई जाऊ परस्पर प्रति सम्मान रखिए विश्व प्रत्येक संस्कृति पाई परस्पर भितरे सम्मान रहु कथारे भावरे संपर्करे ताहा आहुरी अधिक गभीर हो सबु संस्कृतिर विविध फुलरे विश्व बगीचा हेउ सो ब्यूटीफुल एई रिक्वेस्ट सहित एई अनुरोध सहित सारा विश्व आज पालन करुछि ब्यूटीफुल डे ताले आपण मध्य निज संस्कृति को भल पांतु एवं समस्त संस्कृति को सम्मान दियंतु एवं ता विषय जानिबार इच्छा रखंतु मन भितरे एही त आज डे रो प्रकृत उद्देश्य

0: सनम यस दीवाना होता है प्यार अमुगु दीवाना कर दी थी यस चोपड़ा अमुगु दीवाना कर जी तंगर प्रत्येक टी फिल्म में इम्ति करी था वो तो वे ए स्वीट नोट रे स्वीट मेलोडियस ट्रैक सही था वर्तमान इशारा देखी कहिले नहीं समय हो वाइन अप करी अपनी पड़ी बो सुबह सकाल को करना हो वर्तमान जीवा को पड़ी बो आकाश पर दिल्ली केंद्र को तो वे साथी चलन तो परवर्ती कार्यक्रम रिले करी प्रचार करु छु आकाशवाणी दिल्ली केंद्र रु समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्र

0: पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
1: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने जो टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो, कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
0: जी जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
2: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद प्रियंका।
0: एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच

0: देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के पांच देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी, चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Palta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी

साथी वेलकम बैक ट्यून करिछन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कोचन्ते दिल से दिल तक आपन मन को कहि रखु छु साथी आजि आपन मन को पई गुटे स्पेशल स्पोंसर्ड प्रोग्राम अछि जहाँ को सुनिबा पई जमारो आपन भुलिबेनी आजि सकाळ 9:30 रे आपन मन को पई प्रायोजित कार्यक्रम भारत मसाला स्कूल टाइम निश्चय सुनिबे साथी साथी कथा कहुथिली मु चार ताले सकाळर बेडटी ठारु आरंभ करिकी इवनिंग रा खटी पर्यंत सबुठी ए जो चा तार बोलबारा रहिछि चा लवर्स मानन को पाखरे समस्त चाहंती टिके चा आउ टिके जदी चा मिली जाए तले मूडटा त रिफ्रेश होइ किंतु ता भितरे पुनी अनेकंकर अछि भलो चा पीबार कथा सबु चा समस्तंकु पसंद नहि ता भितरे किछि वैरायटी मध्ये अछि किछि लोक खोजंती स्पेसिफिक एमिति हितबो चाटी सेमिति हितबो चाटी किंतु वर्तमान एमिति बहुत लोक अछि जो माने खीरो चा को टिके अवॉइड करछंती कारण ता पई जो समस्या गुडी को देखा जाउछि स्वास्थ्यगत ताको लोक धीरे धीरे बुझलेनी सो दे वांट सम हर्बल टीज जो हर्बल टीज जे कोनोसी साइड इफेक्ट जहार नाही जहा आपन के हेल्थ उपर गुटे गुड इंपैक्ट पकेबो किंतु किंतु किंतु ता धरे मध्य विशेषज्ञ मानन को पाखरु जानिबा को पड़िबो जे आपन को उपर से हर्बल टीज रो आपन कर बॉडी उपर पर्टिकुलरली से हर्बल टीज रो इंपैक्ट टी कोन से बिषय जानिबे प्रथमे ता परे भी किंतु आज मु आपन मानन को कहिबि किछि सुरीला गीत सहित मेलोडियस गीत सहित एमति किछि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्बल टीज बिषय रे जहा आपन को बहुत रिफ्रेश कर दबो एवं जहा आपन को हेल्थ पाई मध्ये बहुत भलो हे पारे तबे जणे भी ते निश्चय किंतु वर्तमान आ गुटे ब्यूटीफुल ट्रैक ताबरे पुनी पुनी आपन मन को पाके स्टे ट्यून्ड

0: वेलकम बैक अगेन, ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो डायल इन लाइव चैटर सिलसिला स्टार्ट ही गई छी। कहि दी छी आपन मानुको आज रो टॉपिक जे आपन को फेवरेट सेलिब्रिटी जदी पहुंच जानती आपन को पाखरे बा आपन को फेवरेट सेलिब्रिटी को सहित बसी के जदी ऑफर हुए कपे चाय पीबा पई ताले को कथारु आरंभ हो आपन को कथावार्ता को टॉपिक रु आरंभ करिवे आपन कथावार्ता कोन पचारिवे आपन को सेलिब्रिटी को एई फली गुटे फैंटेसी भरा टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपन मानको पई 0671230 3153 नंबर आशीजी फर्स्ट कॉल देखिबा की करचंती कोठु कहउचंती और कौन कहउचंती। नमस्कार, की कहउतले कोठु कहउतले? गुड मॉर्निंग।
1: ना ना ना ना जीवन ना ना ना दाऊ साधना दाऊ साधना।

साथी आपण माने अछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो संगेरे समय हे सरलाणी रेनबो एसएमएस रहबे आपण मानकर एसएमएस शीघ्र शीघ्र पठी दियंतु फोन उठांतु जदि आपणकर फरमाइश अनुरोध रो गीत सुनबा पई चाहंती योर्स फेवरेट आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक रे तबे एफएमआरसी लिखी सारा पर एसएमएस बॉक्स को जाई एफएमआरसी लिखिकी क्यों गीत शुणा चाहती कौ चलचित्र क्या डेडिकेट करने चाहती ना एवं शेष में निज ना ठिकना लिखिक पठे दिंतु आम नंबर 09495963210 को व्हाट्सएप भी डायरेक्ट कनेक्ट हो पारे आम सहित 8895254200 हूँ आमर नंबर।

साथी परवर्ती मेसेज टी आमको करुछंती गुड मॉर्निंग सहिता जय जगन्नाथ सहिता अनिल गौरव कविता मानसी अरोरा फैमिली मेंबर्स गार्गी मार्ग न्यू दिल्ली मोतीनगर रु एवं सुनिबा पई चाहिचंती कश्मीर की कली इस फिल्म से खूबसूरत गाना जो हमारे जिस्मो जान पे अभी तक कायम है तारीफ करूं क्या उसकी ए ब्यूटीफुल ट्रैक टी निश्चय प्ले कर दूं चापन को पाई।

साथी समय बहुत कम आपण मान अनुरोध सिलसिला इत्ते अधिक अनुरोध सिलसिला जारी तो रही थी कि अनुरोध संख्या इत्ते अधिक जे सब मेसेज फरमाइश पूरण करिबा आम पक्षे संभवत नुहे तथापि आम चेष्टा करुछु समय बाबंदी हिसाब से आपण मान मन को खुशी करने ये तो आम प्रधान कर्तव्य तेरे वर्तमान ये गीतटी शुणा चाहती कटक किशोर नगर रु बाबन चंद्र पाल और ममता पाल बहुत पुराना गीतटी शेखर घोष कंठरे बयस मोर चबीश पूरी पचिश है ए ब्यूटिफुल एवरग्रीन ट्रैक टी आपरे आ गोटे सुंदर गीत जहाँ शुणापी चाहते सुचित्रा सेनापति शहीद नगर भुवनेश्वर रु फ्रॉम द मूवी बागवान एवं लिखुचंदी गुड मॉर्निंग आपण को वेरी गुड मॉर्निंग आपण दिन बहुत भल जाऊ आपण प्ले करदेवी ए ब्यूटिफुल ट्रैक टी आपण मन पसंद।

0: कोनिया खोजी, अरे भाई कोनिया खोजी, अरे भाई कोनिया खोजी।
1: तबे साथी सकाळु ए पर्यंत ए ब्यूटीफुल सफर रे आपनकर म्यूजिकल हम सफर विश्वजीत आपनको सहित थिला आ कहुतिले किछि कथा आ सुनुतिले किछि मीठा मीठा गीत किंतु समय इशारा देखि कहलानी अभी तो तुमको जाना पड़ेगा बेटा क्योंकि मो परे परे आउ जने सुंदर आर्जे आपन मानक पई तांकर पिटार नेकि आछन्ति कथार एवं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गीत भी आपन मानको सुनेबे। तबे साथी मते आज दियंतु विदा आपनकर विश्वजीत एठी कहुचि टाटा बाय बाय किंतु रेनबो एसएमएस रे आपनक पई शेष गीतटी बजे देखि जाउछि जहाकु सुनिबा पई चाहितले सुचित्रा सेनापति शहीद नगर भुवनेश्वर रु। स्टे ट्यून्ड 200.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो आउ कहुतांतु दिल से।

फ्रेंड्स ट्यून करछन्दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक साथी जेंती कोहंती ना ओल्ड इज गोल्ड हां साथी सही गोल्ड माने एवरग्रीन गीत को बैक टू बैक सुने देउछे एंजॉय करथन तो कनेक्टेड हे रहथन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक साथी।

वेलकम ब्याक वन सेकेंड ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बकाटा दिल से दिल तक सो चले जी किछि कथा किछि गीत हां साथी प्रथम प्रेम साधारणतः युवावस्था रे आसी थाए एही समय रे मन हुए कोमल स्वप्नमय एवं भावना रे परिपूर्ण

0: साथी समय दे इशारा देलानी एठी शेष करुचु किछि कथा किछि गीतर कार्यक्रम को फ्रेंड्स ट्यून करछन्ती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक वर्तमान सुनंतु हिंदी एवं परे परे इंग्रजी रे संवाद रिले करी प्रचार करुचु आकाशवाणी दिल्ली रु
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर

0: ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओ यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने यह बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses.

100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक समय दिन गोटाए 10 बाजी सारी समय है आपणकर फेवरेट शो आज चर्चा रे हाँ साथी सुजाता अच्छी आपण मान सहित किसी मीठा मीठा कथा हवा किसी मीठा मीठा गीत सुनेबी आपणकर मीठा मीठा मत मध्य मागिबी साथी जगतर एकमात्र नियम हेउछि परिवर्तन प्रकृतिरु आरंभ करी मनुष्य जीवन पर्यंत सबकिछि समय सहित परिवर्तित होइथाय जेमिति ऋतु परिवर्तन हुए दिन परे राति आसे तेणु मनुष्यर चिंताधारा माने आम चिंताधारा आचरण और समाज मध्य परिवर्तन पथरे आगक बढ़े किंतु कौनसी गोटे बड़ परिवर्तन आरंभ सबुबले निजो थारु ही हुए जदि आमे निजको बदलाई पारिबा तेबे परिवार समाज और देशर मध्य सकारात्मक परिवर्तन आनी पारिबा आपण भावुथिबे मु एक कथा काहिंकि कहुछि हाँ साथी आज चर्चार टॉपिक हेउछि परिवर्तन हुए निजो थारु करिबा दरकार आपणक मत कण निश्चिंत आपणकर मतामत आमको जणांतु आमको आपणकर मतामत जणैया पई एसएमएस करिया पई नंबर टी हेउछि 09495963210 व्हाट्सएप मध्य करि परिबे व्हाट्सएप नंबर टी हेउछि 8895254200 आउथरे कहि रखुछि 8895254200 तेबे साथी डेरी कहीं करछंदी फटाफट एसएमएस बॉक्स को जानतो टाइप करंतो एफएमआरसी टीके स्पेस दियंतो निजरो मतामत सहित देन टीके स्पेस दे निजरो ना गां ठिकणा लिखबा को जमा भी भूलिबेनी सेतबळ जंगे सुनै देछ गोटे सुंदर गीत एंजॉय करथंतो कनेक्टेड ही रहथंतो 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सहिता

वेलकम ब्याक वान सेकेन्ड ट्युन गर्छन् 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबोको टक दिल से दिल तक सो चलिछि आज चर्चारे हाँ साथी आज चर्चारे आउ जने साथीकर मध्य श्रोताकर मेसेज टी आसी पहुंचि जाइछि से लेखिछन्ति सुजाता अपा गुड आफ्टरनून नमस्कार जय जगन्नाथ टाटा स्टील परिवार तरफ रु ओडिशावासी को प्यार भरा नमस्कार निश्चिंत आपण को मोर प्रति नमस्कार जणे दउछ आपण को नमस्कार ओडिशावासी को लेखिछन्ति अपा प्रथम आमे निजको परिवर्तन हेबा परे फ्यामिली को परिवर्तन करिबा करिबा को पडिबो तापरे समाज ओ देश को आमे जदि परिवर्तन करिबा जदि भलो काम करिबा आम देखा देखि समाज भी भलो काम करिबो आमको नै समाज तेनु आमे जहा करिबा समाज भी सेया करिबो तेनु आमे मानव मनुष्य ए दुनिया को आसीछु माने भलो काम करिबा आमे निजको जेते पारि परिवर्तन करिबा आमो पई सेते भलो एबे लेखिछन् अपा एबे आमे ऑफिस रे खाई बसीचो आपण को प्रोग्राम सुनचो अपा आपण केबे आमो टाटा प्लांट को बुलीबा को आसंतु मेसेज टी करछन् आभा सेन राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा टाटा स्टील प्लांट रो निश्चिंत मते समय मिलले आपण को टाटा स्टील को बुलीबा को जिबे आपणकर सुंदर मतामत आपणको बहुत बहुत धन्यवाद तेज साथी समय तो सरी सरी आसी आपणकर कण रही मतामत निश्चिंत आमको जनातु देखा यापर पर आउ जन श्रोता मेसेज टी आसी पहुंची जाइए से लिखिंट अपा शुभ मध्यान रेनबो पर समस्त कर्मकर्ता मोर आंतरिक नमस्कार आपण को मध्य मोर प्रति नमस्कार समस्त को जनई दौर आम पर तरफ आपण को मध्य ढेर सारा नमस्कार लेखिछन्ति आजिर समाजरे अनेक भिन्न धरणर व्यक्तित्व अछन्ति समस्तक चिंताधारा समान नुहे जणे अन्य जणंको परिवर्तन करिबा पूर्वरु से निजको प्रथमे परखिनबा दरकार कारण से निजे समाज पई ठीक ना भूल मेसेज टू करछन्ति उल्लास कुमार कांडी तांका भणजा शिवांशु नगर मेलासाही अस्तरमपुरीरु आपणकर सुंदर मतामत।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: It is ironic that Pakistan, with its long time,
4: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
3: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और

0: नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
1: India has recently launched
2: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों और माध्यमिक शिक्षा केन्द्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ

0: दिलाए, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंकतालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
2: चाय, ये चाय।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज की फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: चीड़ो था ए आज खाई बाकु तेले वो गे फदे
1: ए ए पसंद है लानी ठीक अच्छी सुनो

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आम राजा बाबू करा जित्ते बेले देखिबो घरे एसी फैन सब चली थिबो।
2: ओहो मा तमरो प्रति कथा।

साथी ट्यून करछन्ती 100.4 आकाशवाणी फिमडेन बकटक दिल तक सोजले जे मो देश किंतु साथी समय र इशारा रे एठु विदाय नउची सुजाता एई जंके थिला सुजातार जर्नी किंतु जीवा पूर्वरु एतिके कहिबी सबुबले खुशी रे रुहंतु हसंतु एवं अन्य को हसंतु रहुचे नमस्कार जीवा पूर्वरु एका छाटी जाउ नै यार किसी समय पर आपण सहित जोड़ी हे आउ जड़े आर्जे आपण को मीठा मीठा गीत शुणे मीठा मीठा कथा से ट्यून कर रही था 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

ट्यून करे शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से ही दिल तक सुरील आफ्टरनून रे सुदीप आछी आपनका पाखरे।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम न...

आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

खबर आई ट्यून करी शांति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो कर रहे समय 5:07:13 निश्चय डायलिन लाइव रे बहुत गुडे कथा हबा आउ एबे जो गरम पड़ी छि किछ दिन हबो जो बढ़ी जाई छि गरमटा मत तो लागो छि हमें समस्त टिके बेसी जत्नवान हेबा उचित कैना गरम सही होनी आउ फैन एसे तले सब बेले तो 24 घंटा बसि हबनी निश्चित भाबरे नित्यदिनिया काम सारिबा को पड़िबो बाहर को जो माने जाउछनी खरा रे जेबा को पड़िबो तो ई जो खरा होछि जो गरम होछि ए टाइम रे केमिति कोन निचर केयर नोचंती से बिसर डिके आज शेयर कर दियंतु नंबर 0671203031 कॉल करि परिबे शेयर करि परिबे खरा गरम रे आपनो निजरो केमिति जत्न नोचंती स्टे ट्यून्ड

ओके थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कॉल कर थी बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 0671233153 कॉल करी परिवे, आपण मध्ये शेयर करी परिवे केमिति निजरो जत्न नोछंती खरारे।

0: ट्यून करी शुनि 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक नंबर 0671-230-3153 कॉल करी परिवे शेयर करी परिवे केमिति कोनो जत्न नोछन्दि निजरा ही गरम रे हेलो
1: विजय कुमार दास सौराट
0: आज्ञा केमिति जत्न नोछन्दि निजरा
1: हम प्रथम कथा जो प्रभु डाकु छी जगन्नाथ ए यंत्रणा रु मुक्ति दियंतु
0: अच्छा
1: जगन्नाथ जगन्नाथ मुक्ति दे परि आउ के देखि दे परिबे

0: नमस्कार श्रोता बन्धु, संध्या 6 मुख्य संवाद सहित मु आदित्य नारायण दास आपण स्वागत करुछि। संबलपुर ढेंकानाल गंजाम जिल्लार जातीय राजपथ गुडिकरे महुमाछी करिडर पई सरकारक निष्पत्ति, चार ऐतिह्य स्वास्थ्य प्रति रहिथिबा सुफल एवं आर्थिक प्रोत्साहन उपरे सचेतनता सृष्टि लक्ष्य नै आज पालन करा जाउछि अन्तर्जातीय चा दिवस। झारसुगुडा जिल्ला ब्रजनाथनगर सहर को क्रियाशील करिबा लक्ष्यरे राजस्व विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी ब्रजराजनगर में एक अत्याधुनिक बसस्टाण्डर शिलान्यास करिछन्ति। राज्य में नागरिकों सुरक्षा को दृष्टि रखी कमिश्नरेट पुलिस पक्ष केयर साथी आप्र शुभारंभ कर आतंकवादी कार्यकलापर भयावहता एवं ए संपर्क में लोकमान सचेतन करा उद्देश्य आज देश में आतंकवाद निरोधी दिवस पालन कर पंचराष्ट्रीय गस्त सफलतार संपन्न कर नूआदिल्ली में पहुंचले प्रधानमंत्री। इबोला प्रभावित देशगुडिकर जातायात करुथिबा यात्रीक परामर्शवली जारी कला स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय। शरीर सौंदर्य वृद्धि पई उपयोग करा जाउथिबा इंजेक्शन व्यवहार को निषिद्ध घोषणा कले केन्द्र सरकार। एवं आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स मध्यरे मैच खेल। श्रोताबंधु वर्तमान पे मुख्य संवाद प्रसारण एतिक शेष होगा। आपण मैंने परवर्ती मुख्य संवाद सुनिपारे राति 7। नमस्कार।
1: यहां खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहां होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।

ट्यून करी शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो घर समय संध्या 6:00 बजी 5 मिनिट 30 सेकेंड सुनिबा आज कार्यक्रम संपर्क सूचना संध्या 6:00 बजी 10 मिनिट्रे सुनिबे गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानस भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना शुणे संध्या 6:00 बजी 30 मिनिट्रे संध्या 7:00 बजी 25 मिनिट्रे शुणे कार्यक्रम संध्या असर राति 8:00 बजी 2 मिनिट्रे शुणे कार्यक्रम गीतर मितरे राति 9:00 बजी 15 मिनिट्रे शुणे कार्यक्रम अभुला स्मृति राति 10:00 शुणे कार्यक्रम रेनबो एसएमएस वर्तमान शुणा आसंता कालीर कार्यक्रम संपर्क सूचना भक्ति गीतर कार्यक्रम अर्घ्यथाळी शुणीपारे सका 6:00 बजी 5 मिनिट्रे अतिबड़ी श्री जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवतर 43तम भाग शुणीपारे सका 6:00 बजी 40 मिनिट्रे सका 7:00 बजी 10 मिनिट्रे कार्यक्रम आमर स्वास्थ्य एणीपारे शिशु अन्यमनस्कता ए विषय आलोचना करेंगे डाक्टर सुचरिता महांती शुभ सका शुणीपारे सका 7:00 बजी 25 मिनिट्रे सका 8:00 बजी 30 मिनिट्रे शुणीपारे कार्यक्रम मर्निंग मेलोडी सका 9:00 शुणे डायल इन लाइफ चिटचाट एथिरे निर्धारित विषय कॉल करी आपण मत शेयर करें दिन 10:00 आपण मनपसंद गीत को एसएमएस बा व्हाट्सएप माध्यम रे रिक्वेस्ट करें रेनबो एसएमएस कार्यक्रम दिन 11:00 शुणीपारे कार्यक्रम कलाकार 11:00 बजी 30 मिनिट्रे शुणे कतोटी पुराणा हिंदी चलचित्र गीत दिन 12:00 शुणीपारे कार्यक्रम किछि कथा किछि गीत दिन 1:10 मिनिट्रे निर्धारित विषय आपण मत आम सहित एसएमएस बा व्हाट्सएप जगे शेयर करें कार्यक्रम आज चर्चा दिन 2:45 मिनिट्रे शुणे कतोटी ओडिया चलचित्र गीत अपराह 3:00 शुणे कार्यक्रम मो देश अपराह 4:00 शुणे कार्यक्रम सुरिला आफ्टरनून 4:50 मिनिट्रे रही प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे अपराह 5:00 शुणे डायल इन लाइफ चिटचाट एथरे सीधासलख फोन जगे निर्धारित विषय आम सहित कथापर संध्या 6:10 मिनिट्रे शुणे गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानस भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना शुणीपारे संध्या 6:30 मिनिट्रे संध्या 7:25 मिनिट्रे शुणे कार्यक्रम संध्या असर राति 8:02 मिनिट्रे शुणे सुपरहिट ओडिया एवं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम गीतर मितर राति 9:15 मिनिट्रे शुणे कार्यक्रम अभुला स्मृति एणे कतोटी पुराणा ओडिया और हिंदी चलचित्र गीत राति 10:00 शुणीपारे आपण मनपसंद गीत आपण मनपसंद कार्यक्रम रेनबो एसएमएस शेष होगा आसंता कालीर कार्यक्रम संपर्क सूचना ट्यून करी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।

0: सर्वकारीय अनुदान प्राप्त मदरसा इत्येतेषु मान्यता प्राप्त मदरसा इत्येतेषु तथा च अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयस्य एवं मदरसा शिक्षा विभागस्य अंतर्गतं कार्यरतासु अनुमोदितासु शिशु शिक्षा केन्द्रेषु माध्यमिक शिक्षा केन्द्रेषु च प्रवर्तिष्यते। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तथा दक्षिण कोरिया देशस्य देशभक्ति भूतपूर्व सैनिक कार्यमंत्री कुओन ओहयोल च अद्य सियोल नगरस्य इमजिंगक उद्याने भारतीय युद्ध स्मारकस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनम् अकुरुताम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति। क्रीडा सायं सार्धसप्तवादनतः आरभ्यते। गुजरात टाइटन्स दलेन पूर्वमेव अन्तिम चतुष्क क्रीडायां स्वस्थानं निश्चितम्। चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं च अंकतालिकायां चतुर्थ स्थानं प्राप्तुं स्वस्य संभावनां सुदृढीकर्तुं प्रयतते। अत्रांतरे गतरात्रौ कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन मध्ये कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुर्भिः स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: आपण मने कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु प्रचार करुछु आकाशवाणी।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

ट्यून करी शे दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक गीतर मितरे सुनि शांति किछि सुंदर सुंदर गीत तबे गीत त आमे सबले सुनु छे गीत सुनु सुनि बहुत काम मध्य करू छे आउ से काम कला भितरे कोन होए ना भूल भटका हे जे जिनस सजरा सजरी करी रखुथिबे भूल जगह रख देबे जदि रोसेवस करू छेंति टिके रोसेटा खराब हे जाय कि किछि भी जिनस किबा घर बाहर लाबळ को ताला पकोथिबे चाबीटा छाडी दिथिबे एमते विभिन्न प्रकार जिनस होए आउ छोट छोट भूल जोड़ा आम घरे मु गोटे रिसेंट देखे सेटा होची गाड़ी रो स्कूटी रो डिक्की खोली के डिक्की भितरे रहिगला चाबी डिक्की हेगला लॉक तो तापर आ गोटे कौन प्रॉब्लम है ला? ना डुप्लीकेट चाबी खोजिबार समय गला कारण डुप्लीकेट चाबी बहुत दिन हेलानी यूज हैनी कोठ रही कहार मन नहीं खोजा खोजी करी भगवान को दर डुप्लीकेट चाबी भी मिलगला और चाबी रिकवर भी हेगला तबे से इंसिडेंट रो आम घर समस्त कौन शिखिलु जेतेबेले डिक्कीटा आमे खोलुचु स्कूटी रो डिक्कीटा जेतेबेले खोलुचु सेतेबेले चाबीटा जमारु हाथ रे धरिबानी इन केस हाथ रु खसी जाइथिबो तापर मन नथिबो आमे भाबिथिबो चाबी तो गाडी रे लागिछि कि पॉकेट रे छै ओ डिक्कीटा बंद कर देथिबो तबे मु एटा छोट एग्जांपल देली ए जो छोट भूल टी हेला ए भूल रे आम घर रो जेते मेंबर समस्त एटा सिखिले जे डिक्की खोलिबा समय हाथ रे आमे जम्मा चाबी धरिबानी कारण भूल रे चाबी जे कि पड़िजिबो कोडी गाड़ी डिक्की रे स्कूटी डिक्की रे तो ए जिंसटा समस्त माइंड रे रहिला आ समस्त से कहले गाड़ी रे चाबी लागिथिबो नहले चाबीटा पॉकेट रे रखा हेथिबो न लाउ जणो हाथ को दिया हबो जे भी संगे थिबे तो से जो चाबीटा गाड़ी डिक्की रे रहिबार भय रहिबनी डर रहिबनी तबे एमते बहुत जिंस हमर डे टू डे लाइफ रे हुए जोटा भूल हुए जो कामटा से कामटा आमे कहू जे एटा हेई पारलानी मो द्वारा होउनी नाई से जिनसटा जितेबेले होउची से जिनसटा गोटे नेक्स्ट पॉइंट गोटे भलो पॉइंट सिखेबा पई भी आसुची आमे सेया भाबी कि जदि धरिबा ताहेले देखिबे जहाबी करबा को जाउचंती आ भूल होउची आपण धीरे धीरे से जिनसरे एते भलो करबे जे केही विश्वास कर परबेनी आपण निजे भी विश्वास कर परबेनी जे आपण से जिनस जे विश्वास करू नथिले कामटा करि परबे सेटा एते भलो रे केमती करि परुचंती

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया।

दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operations.

ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टडी कर समय रात 9 बजे 20 मिनिट 5 सेकंड अभुला स्मृति रे सुन छंती किछि अभुला एवरग्रीन सॉन्ग्स वर्तमान सुनी परबे जमीर फिल्म रो गीत किशोर कुमार आशा भोसले को वॉइस रे साहिर लेखि छंती गीत एवं म्यूजिक रे सजे छंती सपन चक्रवर्ती

आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से ही दिल दाग अभुला स्मृति परवर्त अभुला गीत शुणीपारे मुकद्दर का सिकंदर फिल्म रो लता मंगेशकर वॉयस रे गीत लिखी अंजान म्यूजिक रे सजेछंती कल्याणजी आनंदजी।

करी शुंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से ही दिल तक राती 10:00 बजी 2 मिनिट 43 सेकंड हे छी स्टूडियो घड़ी रे आपण मनको प्रिय प्रोग्राम रेनबो समय आरंभ करिवार भी समय हि जाई छी। मोबाइल फोन रे मेसेज बॉक्स को जेबे कैपिटल लेटर एफएम आरसी लिखिबे स्पेस दे इन एड्रेस सहित जो गीत सुनिबा को चाहु छंती से गीत रो फर्स्ट लाइन एवं सेरा जो फिल्म बा जो एल्बम रो ताना सहित पठे देबे 0949596321 नंबर रे। ऑलरेडी किछ मेसेज पळे आसे जे सेति मै मो डेरी नकर आरंभ करि दउ छी। दुर्गा प्रसाद दलाय मेसेज करि छंती पारेश्वर साही जोबरा कॉलेज स्क्वायर कटक रो नमस्कार जय जगन्नाथ जणे छंती आपनको मधे नमस्कार जय जगन्नाथ लेखु छंती आपनको सुंदर उपस्थापना पई हृदयरु बहुत धन्यवाद प्रभु जगन्नाथको कृपा सबबळे थाउ आपण सबळे भलरे थांतु। थैंक यू सो मच आपनको भल पाइबा एवं आशीर्वाद पई। ससधर नायक मेसेज करि छंती आठगढ़ रो नमस्कार जणे छंती आपनको मधे नमस्कार सुनि दबा समानको मन पसंद रखिता।

बड़ी है। ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से ही दिल दायक रेनबो एसएमएस रे परवर्ती मेसेज करी प्रभात बलियार सिंह चंदन टुनी बांकी कॉलेज बांकी रु परवर्ती मेसेज करी सीडीए सेक्टर 11 कटक रु उर्मिला निर्मला प्रत्युष प्रभाकर शुभरात्रि जनई छंदी आपन को मध्य शुभरात्रि सुनि दबा से मनपसंद गीत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग

0: संघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र
2: नमस्कार। आज अंतिम मुख्य संवाद सह सत्यरंजन महापात्र। सांप्रतिक पश्चिम एशिया परिस्थिति जोगुं देश में पेट्रोल डीजल खर्च काट पर प्रधानमंत्री निकटने जनसाधारण को निवेदन करेप्रेक्षी में आज मुख्यमंत्री मोहन चंद माझी सरकारी विभागगुड़िक पेट्रोल और डीजल व्यवहार ह्रास करने निमन्ते एक 8 सूत्री निर्देशावल जारी कर 2027 मसीहा सुधा राज्यर समस्त ग्रामकु पाइप जोगे पानी जल जोगाण करा कहिले विभागीय मंत्री रवि नारायण नायक। पुरी रथयात्राकु श्रृंखलित ओ व्यवस्थित भाबे संपन्न करिया पई पुलिस महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरेनेंक अध्यक्षतारे उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित। राज्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्षर् आसंता 30 तारीख शनिवार दिन अपराह 3 भुवनेश्वर स्थित उन्नति भवन एक स्वतंत्र अपिल क्याम्प कोर्टर आयोजन। झारसुगुड़ा जिला ब्रजराज नगर ठारे राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी 23,48,00,000 टंका व्ययरे 82 प्रकल्पर कले भित्तिप्रस्तर स्थापन। देश में ऑटोमोबाइल शिल्प क्षेत्र को विश्वर शीर्ष स्थान को उन्नीत करने को लक्ष्य रखी सरकार कहिले सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी। नुआदिल्ली आसंता 28 तारीख आरंभ हो चतुर्थ भारत आफ्रिका शिखर सम्मेलनी वर्तमान पर स्थगित। देश में एलपीजी उत्पादन वृद्धि पाइबा सहित दैनिक रिफाइनरी गुड़िकरु पाखापाखि 47,000 टन एलपीजी उत्पादित होउछि सरकार स्पष्टोक्ति। राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी जनित वर्षा जारी प्रबल वर्षा हेबा नै 26 जिला को सतर्क सूचना जारी कला आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। आज मुख्य संवाद समाप्त होला। नमस्कार।

सुप्रभात श्रोता बंधु, नवप्रभातर कण स्पर्शरे आखि मळि मळि उठुछि धरित्री। मंगल आळती सह गुंजरित हेउथिबा घंट घंटीर शब्दरे पवित्र हेउछि समग्र वातावरण।

हर किसी के सपने हैं, हर किसी के सपने हैं, हर किसी की कहानी है, बस छनक से ही पहचान लो इन घुंघरुओं की दास्तान पुरानी है।

मॉर्निंग मेलोडी चाली ची म्यूजिक मित्रानो सह के बड़ा 100.4 आकाशवाणी एफएम रेडियो कटक रे दिल से दिल तक आपण हमको सुनी परचंती न्यूज ऑन एआईआर ऐप माध्यम रे भी तुम ही से है जो जितना है तुम ही से है जो जितना है सब तुम्हारा ही तो भाई बना लो घुंघरू पायल का बना लो घुंघरू पायल का न चालो जितना जी चाहे

मीठी मीठी बातों के साथ ये झंकार पायल की मीठी सी, हम सब कुछ भूल जाते हैं कुछ पल के लिए जब तुम आते हो सामने धीरे से, पायल की मधुश मधुर आवाज लिए। ये घुंघरू भी ना चैन से जीने देते हैं ना सोने, बस इनकी छनकती खनकती आवाज बस ऐसे ही सुनते रहे ऐसा लगता है ना।

याद मेरी अब ये किसको बहलाएगी, ये पायल किस आंगन घुंघरू बजाएगी। घुंघुर गोटे एमिति प्रतीक जहा संगीतर ताले ताले नृत्य सृष्टि करे एवं संगीत सह तार एभली संजोग एभली जुगलबंदी जहा सृष्टि करे अपूर्व लास्य अपूर्व छंद तोली उठे ए घुंघुर सकाशे।

सुनचुनी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक तो मॉर्निंग वेल लोडी आज केमिति लागला निश्चय आपण आमको मेसेज करी जणेबे फीडबैक रे तेबे अबिका समय आजर प्रश्न रो उत्तर देबार आपनको पचारथिली एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तांकर जन्मदिन हैप्पी वाला बर्थडे उद्देश्य रे प्रश्नटी थिला जे बजरंगी भाईजान ई चलचित्र रे से काम करिसंदी सलमान खान को मूवी अ बहुत सुंदर मूवी आपण मानको बहुत भलो लागिथिला सेते बेले आ एबे भी जो माने देखुचंती खूब भलो लागिबो निश्चय तबे ई बजरंगी भाईजान रे नवाजुद्दीन सिद्दीकी मध्य काम करथिले आ आपण को पचारथिली जे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बजरंगी भाईजान रे जो कैरेक्टर करथिले तार नाटा कोन सठिक उत्तर हला चांद नवाब एवं से एक जर्नलिस्ट भूमिका रे थिले तो सठिक उत्तर तो अनेक पठे चंती हेले प्रक्रे

Good morning, Apramani Tune Kurshandi, 100.4 Akashwani from Rainbow Katak Dilse Dilta Kwan Dilse Dilta Kri Devamitra Ajapananka Sahita. Live show started Jaichi and Devamitra Apananka Sahita Achi. Kindo Chiponarena Amapakare Anik Prasna Pohanchi Thai. Pratidina Sakale Emiti Johnny Bakti Thanti, but Emiti Kichi Kotha Thai, Jaha Amoko Akoko Bodibaku, Prerana Dita. आम मन भितर शक्ति जगे था केबे केबे आमको आगो को बढ़िबा पाए प्रेरणा आमर मां को ठू मिली था केबे केबे आम परिवार ठू मिली था केबे केबे आम स्वप्न ठू मिली था किने किए आम बैक रे थांती जे आमको प्रति टाइम रे पुश कर थांती आपण को लाइफ रे भी उंती के थीबे जहां जे आपण को प्रतिदिन पुश करंती किछि नुवा करबा पाए किछि इनोवेटिव करबा पाए किछि एमिति गीत थिबो जहां आपण को दिन को पूरा एनर्जेटिक कर दो थिबो आउ किछि गोटे शब्द थिबो जोथरे आपण को मूड पूरा बूस्ट हे जाओ थिबो यस ताहले आजि आमे कथा आबा ताहले शेयर करंतु मो सहित कॉल करंतु नंबर हेउछि 0671230315 रे कॉल करके जणंतु कि आज सकाळे आपण को सबोछ अधिक मोटिवेट करथिबा कथा टिए कोन निहात भाबरे आपण को कथा शेयर करन तो मोसे तो चलन देखिब आज प्रथम कलर के आछन देन से कोन कहू छन दे किछ कथा नै कॉल टी काटि जाय छी किंतु आपण माने मते कॉल कर पारबे ऑन द नंबर 0671230315 कॉल करन ते एवं आपण का कथा मोसे त शेयर करन ते किंतु ता भितरे म आपण को सुनौ छी गुड ब्यूटीफुल सा ट्रैक ओनली ऑन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टे ट्यून्ड

0: सुनिश्चित है प्रमाणित देवो मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे अंदर से दिल तक रे शो चाली छे डाल इन लाइव रे चलन देखबा मत कि आज हमरो प्रथम कले डाल कर छन ध्यान से कण कहो छन आज रो टॉपिक को नी माय बैड कॉल टी कट जाय जी किंतु किछि कथा नै आपण माने डायल करि परबे ऑन द नंबर 0671203153 रे एवं शेयर करि परबे आपणक कथा मो सहित चलन देखियो हमर नेक्स्ट कॉलर के आछन दिन से कण कहो छन दे हेलो
1: गीता जे व्याख्यान करे ताहा थारु नै मो अधिक प्रिय गीता जे व्याख्यान करे ताहा थारु नै मो अधिक प्रिय श्रोता आउ वक्ता उभय मुख्य लवंती नमस्कार देव मित्र मैडम जी
0: नमस्कार के कहउछंती कोट कहउछंती
1: मु प्रशांत कहथली राजंस कटक रु
0: केमती अछंती
1: बहुत भल अछि मैडम आपन के संगरे अनेक दिन रो व्यवधान परे टिके सुजग सृष्टि हेछि
0: अच्छा आज टॉपिक ऊपर कहन तो आज सकाळ आपन
1: को टॉपिक ऊपर सकाळ चर्चा कर दे छंती
0: आज सकाळ आपन को सबठे अधिक मोटिवेट करथिबा कथाटा कोन
1: गीतार प्रत्येक लाइन आमको वास्तविक जीवन सांघातिक मैम एनर्जी जगाए तो वास्तवता मैम
0: अच्छा ताहले आज सकाळु आमर अर्घ्य थाळी रे आपनको गीता रिलेटेड जहा सुनिबाकु मिलै छै
1: मैम मु अनेक दिन आगुरु ही ता से त संशिष्ट मु जानि छी जीवन रो वास्तवता कोनो आ मु चाकचक्य आ विलास वचन पछरे गोडायनी
0: आज्ञा तो आपण प्रतिदिन सकाळु गीता पढंती आ सेटा ही आपनको मोटिवेट करे गीता रो प्रति के अर्थ
1: पंडित न है किंतु तार गोटे ओडिया अनुवाद पूरा 18 अध्याय रे अछि मो पाखरे एवं मु ताको अनेक बार पढ़ी छी मैम आपन को गोटे अनुरोध करबी आपन अधिकार अधिकार टिके सतांक फोन टिके धरिया को टिके चेष्टा करन ताकि ए टॉपिक माध्यम रे किछ रियलिटी टिके प्रकाश पाइबे दरकार
0: निहाति भाबरे बहुत बहुत धन्यवाद आपनका कथा मो रखिबा के चेष्टा करबी एवं आपन जेमती कहले आपन
1: मैम आपनका नाम रे गोटे चर्चा कोन की हेलो
0: किसी कथा नहीं कल टी कटि जाए कि आपने कल करेंगे अंदर नंबर 0671203153 रे शेयर करेंगे आपण कथा मो सहित जे आज सकाल आपण को सबुठ अधिक मोटिवेट कर कथा कौन निहाती भाव में शेयर करते अंदर नंबर 0671203153 चलते देखिए आम नेक्स्ट कलर किए आसे कौन कहते आज टॉपिक को नहीं हेलो
2: हेलो जय जगन्नाथ राधे राधे
0: जय जगन्नाथ राधे राधे के कहउछंती कोठ कहउछंती
2: मैं बलरामदार एजी ऑफिस हाई कोर्ट रो कहथली
0: अच्छा आज सकाळ एमती कोन कथा जहां आपन को मोटिवेट करै छै
2: मोटिवेट मु डेली सकाळ पर ठाकुर पूजा बेले मु भगवान श्री कृष्ण रो अष्ट प्रणामटा ये परखाय ठाकुर घरे पूजा मु डेली मोटिवेट आउ जे गाडे सारी के आगो ठाकुर पूजा करबी एटे भगवान श्री कृष्ण रो अष्ट प्रणामटा को आगो मु से जप करै आया
0: अच्छा तापर आपन को आपे आपे सब मोटिवेशन मिले जाय थाय ना कोन नहीं
2: सर
0: कोई भी समय कथा ही पारिबानी किंतु
2: गोटे मिनट भी शेष कर दे गोटे दी मिनट भीतर बहुत बढ़िया जिनसे जान
0: जान की बहुत भल लगिला जे आपण भगवान श्री कृष्ण को ना रु ही दिने दिपन दिन टी आरंभ करू छेंती
2: एवं सेटा हला भगवान श्री कृष्ण रो अष्टतर नाम बुझिले आज्ञा पद्म पुराण पद्म पुराण 104 पुसार से पद्म पुराण 104 पुसार से भगवान श्रीकृष्ण अष्टतर नाम डेली सका सन्धार पढ़ले बहुत किसी घर मंगल पिला मंगल रज माइंड टा फ्री रोत किसी अच्छा अवतार नाम से रही सब दस अवतार नाम अन्न्य बहुत रही
0: खुशी लगे जो मैंने भी आमको शुणु थे निहाती भाव नाम को निज मुखर ने जहाद्वारा कि मॉर्निंग रु एनर्जी मिले गोटे मोटिवेशन मिले
2: पद्म पुराण
0: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल कर रही नमस्कार
2: नमस्कार जय जगन्नाथ
0: आपण भी कॉल करि परबे अंदर नंबर 0671203153 रे एवं शेयर करि परबे जे आज सकाळे आपण को सबुठ अधिक

मोटिवेट करिथिबा कथाटी कोन काहेकि ना बेले बेले किछि गीत बि थाय जहां हमको सकल सकल मोटिवेट करै थाय हम परिवार रो किछि लोक हमको सकल मोटिवेट करै थांदी किछि कथा हम आखो पाखरे घटी जाउ थाय ताको देखि के बे हमें निजे निजो को मोटिवेट करै थौ ठीक सेमिति आज सकल एमति कोन हिछि जहां आपन को मोटिवेट करै छि निहाती भाबरे शेयर करंतु शेयर करबा पई डाल करंतु नंबर हे होछि 0671230315 चलन तो देखिबा हमरा नेक्स्ट कलर के अछन एन से कोन कहि छन हेलो नमस्कार किए कह कौट कह हेलो किसी कथा नहीं कल टी कटि जाइए कि आपने कल करेंगे अंदर नंबर 0671230315 आपको सुनाऊँ कुमार सानु कंठ से गोटे ब्यूटीफुल संगीत शुणु था केवल 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कनेक्ट दिल से दिल तक स्टेट ट्यून्ड

0: गीता परिपूर्ण स्वागत आपण माने ट्यून करछन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक देव मित्र आज आपण के साथ चरण देखबा हमर नेक्स्ट कलर की आछन देन से कोन कहो छन आज रे टॉपिक को नी। हेलो
1: हेलो मैडम नमस्कार
0: नमस्कार सर अच्छा आपण को एम पी कोन सकल मोटिवेट करे आज सकल आपण को को जनसटा अधिक मोटिवेट करे छे
1: आपणतर जे भजन जोंतला 6 तारिख 7 तारिख कितरे
0: सकाळ आपणको गीत ही आपणकर एनर्जी बुस्टर थाय ना कण अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करथिबार रहूछ नमस्कार आपण भी कॉल करि परबे अन द नंबर 0671230315 रे एवं शेयर करि परबे आपणक कथा हम सहित आ हो समस्तंगो रिक्वेस्ट करि रखिबे जेतो बळे भी आपण हमको कॉल करू छंती निहत भाबरे किछ समय व्यवधान रे कॉल करंत जहा द्वारा जो नुवा श्रोता माने भी हम सहित जोडी हवा पई चाहू छंती से माने भी हम सहित जोडी हे परबे किंतु किछ कथा नै आपण माने कॉल करि परबे अन द नंबर 0671230315 रे एवं शेयर करि परबे आपणक कथा मो सहित।

0: ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛୁ ଆଗକୁ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁକି ଆଉ।
1: अच्छा ठीक अच्छे आपण अनेक किछि मोटिवेशनल स्पीकर मानंकर कथा सुनि के ताले निजो को मोटिवेट करनते सखळ ना कण
0: मोटिवेशनल स्पीकर मानंकर कथा सुने आपण मानंकर कथा सुने के जो आरजे मानंकर कलर्स मानंकर पर डे मु 8 रु 10 टा रेडियो सेंटर रे जोगाजोग करे डायल करे एवं विभिन्न प्रकार रेडियो प्रोग्राम सब सुनिकिरी पूरा मन टिके एनर्जेटिक हो जाए मैं आगे बढ़िया पाई मतलब गोटे खोराक जोगे थाए
1: बहुत बहुत धन्यवाद एमती रेडियो सहित जोड़ी है कि थान तो हमको कॉल कर थी बारो बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार
0: जय जगन्नाथ।
1: ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଏମିତି ମୋର ଚାଲୁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ଏବେ ଫୁଲ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍।

ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଭଲ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଖରାପ, ହେଲେ ସତ କଥାଟା ଏଇଟା ଯେ ଯିଏ ମୋତେ ଯେମିତି ବୁଝିଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଠିକ ସେମିତି, ହଁ ଯିଏ ମୋତେ ବୁଝିଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଭଲ, ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ବୁଝିନି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖରାପ। सुनिछोदी आपण माने देव मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे एंड स्टो सो आरंभ हो जाई छी रेनबो एसएमएस रा जोची आपण माने निजर खास लोक मानु को किछि खास गीत डेडिकेट करि थांदे, ताले जदी आपण निजर खास लोक मानु को किछि बिल्कुल सा गीत डेडिकेट करबा को चाहौछोदी ताले बिल्कुल भी लेट करन नै, निजर इनबॉक्स को जानतो टाइप करन दो FMRC स्पेस दे आपण को गीत सुनबा को चाहौछोदी तारना स्पेस दे गीत टिको फिल्म एल्बम रसिची तारना लेखन दो एवं परे परे कहा को डेडिकेट करबा को चाहौछोदी आमत्र रे तांको नाम लेखन दो एवं परे परे निजे नाम गा ठिकाना लेखी पठी दियन दो आमो पाखो को। आमो पाखो को पठेबे पई नंबर टी हिउची 09495963210। आपण माने चाहिले आमको व्हाट्सएप माध्यम रे मध्यम एसएमएस करि पारिबे, व्हाट्सएप नंबर टी हेउछि 8895254200। यस आपण मानको एसएमएस अपेक्षा रे देव मित्र शोर रहिबो। चलो देखिबो आजर फर्स्ट एसएमएस के कोठ लिखि छन्दि एवं से कोन।

सुनिश्चित या प्रमाणे देवमित्रा को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक यान सो चाली छे रेनबो एसएमएस रे चलन देखे वा आम पाक को नेक्स्ट एसएमएस के को लिखि पठी छंदी एवं कौन लिखि छंदी ए एसएमएस रे लिखा छ जय श्री कृष्ण पठी छंदी एसएमएस प्रकाश गोप्रो लिखि छंदी पागल प्रेमी रु सुनिबा को चाहि छंदी मते गाली देई पारो निहाती बाबरे आपन को मन पसंद रे गीत म आपन को शेयर सुनिबी चलन देखिवा नेक्स्ट एसएमएस के को पठी छंदी ई एसएमएस पठी छंदी मुंडा पंडा कोटिलो जगसिंहपुर डेडिकेट करू छंदी समस्त लिसनर्स एवं समस्त आरजेस मानन को एफएम रेनबो रो सुनिबा को चाहि छंती मुझे प्यार हुआ आलामिया जुदाई चलचित्र रो निहाती बाबरे ब्यूटीफुल सा गीत मा अपन को शेयर सुनिबी ताले चलन दो बिल्कुल भी लेट न करी सुनि न बा बैक टू बैक ए दुटी ब्यूटीफुल ट्रैक को

सुनता तो झुमता तो ट्यून करके रखे था 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का एक दिल से दिल तक किंतु एबे समय मते इशारा देलाने आपण समस्त को टाटा बाय बाय कही के जीवा पाई किंतु हां ई जो बढ़िया खरा होचे निज को हाइड्रेटेड रखंतो सुस्त रहंतो एवं समूह बेले पाई सुरक्षित रहंतो किंतु मु जाजो आपण को बिल्कुल भी एकुटिया छड़ दे जाऊनी कहि कि न मो परे परे आसी जाउ छंदी आपण को प्रिय आरजे सिउली आपण को सहित दिन तमाम रहिबे एवं ढेर सारा गीत सुनैबे मीठा मीठा कथा मध्य कहिबे आज पाई देव मित्र को विदाई देंतो लव यू ऑल टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे ahead.

କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିବନି କହିଲେ ଶିଉଲି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ ବୁକାଟେକ୍ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ये दोस्ती का रिश्ता भी कितना अजीब होता है, दूरियां होते हुए भी दिल कितने करीब होता है। आपणकर आ मोर कनेक्शन हिउचे दिल र दिल कनेक्शन। यस सेथि पई त हमें परस्पर मध्ये कथावार्ता हे परुछु, मीठा मीठा गीत मध्ये सुनि परुछु एवं परस्पर मध्ये थिबा आपणक मन रे जहा भी कथा रहिछ आपण मो सहित शेयर करि परुछंदी, मो मन रे जहा भी किछ कथा रहिछ मो आपणक सहित शेयर करि परुछि। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ ଦିଲ ସେ ଦିଲ ତକ୍ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସଫର ଜାରି ରହିବ।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।